0: सपना सानो फुल बिमला माया पुरै सपना सानो फुल
1: सूचना संगीत मनोरंजन को अटूट साहिनो यो हो रेडियो साहिनो 99.8 मेगाहर्ट्ज़।

ओम चंद्रमा मनुष्य वजा तक्षक्षु सूर्य वजा तोत्रा वायुस्तान सम

0: दौलत।
1: कौन?
0: पता नहीं, दौलती की गाड़ी चला रहा था। मरती मरती बची हूँ मैं।
2: फालतू साला मुफ्त में सुन रहा है, मत देख उसको।